करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

और सीधे लेके तो भी समझ जा रहे हैं सब गया बहुत था लेके तो भी जा रहे हैं।

0: काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी काची दे मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत भरमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी परधन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे दानी बलवंश छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण सम्रथ श्री धर राख ले हो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारण को हर तारण तरण सम्रथ सवै विध कुलह समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोयो गत धाओ मूर्त घरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो हो छो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम पद नानक राम रंग आत्म स्यों रहो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंधप बुझन की सब सूझ परी वृद्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट विखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक घरी कर गहले हो कृपाल कृपा निध नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुघना संपत डोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंधप तास्यों मो बढ़ो सो घना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
1: सत सूर शील बलवंत सत भाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज धुर धवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसै संत प्यार जह करतारे संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यत जन्म कल उजरे गुर परस्यो अमर प्रकाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवे रिद्धि बसै बावां जो तीन लोकांतर मोहे हृदय वसै इक ही ओ सोय रस तिन ही जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो सोय नाम भगत परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर्स कियत चरण गुर अमर पवर राय हाथ तपर्स कियत हाथ लगाए गुरु अमर पै जी तपर्स कियत जी गुर अमर बन जाय नैन तपर्स कियत नैन गुर अमर पिख जाय श्रवण तपर्स कियत श्रवण गुरु अमर सुनि जाय सक्यात सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित। सक्यात सो सिर जालप भनै जो सिर निवै गुरु अमर नित। सक्यात सो सिर जालप भनै जो सिर निवै गुरु अमर नित।
2: सतनाम कर सास सो दृढ़ नानक संग रियो काते अंगद लैण परिगत तास करन लिमरियो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाना जो गुण लखियां नूं इन्हें

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्थवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंक एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जान प्राप्त में मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपतियां कहाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार सत समा दीवान सत सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप

0: बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी रहा तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live for Bonnie Kirkland 24 hours a day and around.

खंडे खंड प्रचंड पारम पूर्ण प्रेम की प्रीत सवार पारम पाए सके पद्मा पद पर...

नानक कसम मल जाए कसम मल जाए हर खान नानक कसम मल जाए दबन दबा दबा मबर गजर नीला नीला गजे नीला दबा दबा मर दबा मदबा हरे मदा दानी दबा दबा मदबा मबर गजर हरे गजर नीला दानी दबा दबा

गुरु अमर गुरु की सत गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास ना ये रामदास सरी ना ये रामदास ना ये रामदास सरी दास सरी दास सर ना ये रामदास सरी ना ये रामदास सरी हम

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं सतगुर सेव अलखगत जाकी श्री गुरु रामदास तारण तरण।

ना ये राम दा सर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट देख कियो फिरत अदास को सितन सतगुर सुख पयो।

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई, उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसे भी संगीत ग्रंथ राग किसे राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के की जाती है। इसका वादी सुर ऋषभ अते समाधी पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्या है। सरवण करो रे मन कौन गत हुए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासो। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द दे बोल हैं राम सिमर राम सिमर, ए है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत हुए है तेरी,